संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के पट पट की जान जा बुद करख करा करतारा पर जा तरत तब देह अपारा

रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शास्व सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताही उबारा। जिन नर नाम

दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए। दीवाने को कर में कहा मा तुम मेल दर न लिखा पीड़ छुटे।